0: सरे।
1: नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे,
0: देहा कोई न सुजे जे तिस गुण कोए करे।
1: सुने सिद्ध पीर सुन नाथ, सुने धरत धवल आकाश,
0: सुनया दीप लोक पाताल, सुनया पोए न सके काल।
1: नानक भगता सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश,
0: सुनया ईश्वर वर्मा इंद, सुनया मुख सलाहण मंद,
1: सुनया जोग जोग तन भेद, सुनया सासत सिमरत वेद।
0: नानक भगता सदा विगास, सुनया दुख पाप का नाश,
1: सुनया सतसंतोख ज्ञान, सुने अठ सड़का स्नान,
0: सुनया पढ़ पढ़ पावे मान, सुनया लागे सहित ध्यान।
1: नानक भगता सदा विगास, सुनया दुख पाप का नाश,
0: सुनया

0: स्वामत निरंकार
1: असांख जाप असांख पाव असांख पूजा असांख कर्ता कर्ताओ
0: असांख ग्रंथ मुख वेद पाठ असांख जगमन रहे उदास
1: असांख भक्त गुण ज्ञान विचार असांख सती असांख दातार
0: असांख सोर

नमो शास्त्र पाणि नमो अस्त्र माणि नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता नमो नित नारायण क्रूर कर्मे नमो प्रेत प्रेत देव सुधर्मे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगी नमस्तंग स्नान सदा सचदानंद सर्वंग प्रणासी अनुपे रूपे समस्त निवासी परम परम

आलस्य कर्मादर्श्य धर्मं सर्वं पर्णाडे अंडंड बाडे गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे चतुर चक्र कर्ता चतुर चक्र हर्ता चतुर चक्र दाने चतुर चक्र जाने चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे चतुर चक्र माने।

0: सर्वत्र पिसे के सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले
1: के सर्वत्र अंता के सर्वत्र घंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी
0: सर्वत्र काजे के सर्वत्र राजे के सर्वत्र सुखे के सर्वत्र भूखे
1: के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र देश के सर्वत्र पेश
0: सर्वत्र मानिए सदैव प्रदानिए के सर्वत्र जापिए के सर्वत्र थापिए
1: के सर्वत्र पान के सर्वत्र मान के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र
0: सर्वमंगल्य

स्वरूप है, त्रमुक्त प्रभूत है, प्रयुक्त प्रभा है, सजुक सुधा है, समस्त सलाम है, सदैव काम है, निर्बाध स्वरूप है, अगाध है, अनूप है, त्रभंग त्रभादे गंजे अगाधे सुभंग सुरभागे सो सर्वानुरागे निरुक्त प्रभा है, सदैव सदा है, प्रभुक्त स्वरूप है, प्रयुक्त अनूप है,

0: जप जपन है।
1: अकलंकृता है सर्वा कृता है कर्ता कर है अर्ता हर है।
2: परमात्म है सर्वात्म है आत्म बसे जस एजस अपचांग प्रयात चंद्र।
1: नमो सूर सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो।

नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे गंजल नामे समस्तुल निवासे सदा सचिदानंद सतरंग प्रणासी क्रिमिन क्रिंदा समस्तुल निवासी चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते।

बास की ओ बख्यान सो बैठ के ऐसी ऐसे सो बैस बतायो काहू लै पाहन पूज तरयो सिर काहू लै लिंग।

मोर अच्छा निज कर दया करे सब बैरन को आस सिंगरे तो मैं शाड कोई अवर न त्याऊ जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं।

अवृक्षा मेरी तुम करो सिखो बारा सिख संगरो जी अस्तु तब शरणी परे तन के दुष्ट दुख तो है मरे जो कल को

0: मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बने।
1: हर गाओ मंगल नित सखी सोख दुख न व्यापे।
0: चरण लागे दिन सफा के अपना फिर जापे।
1: अनंत वाणी गुरु शब्द।

रहत दान, विवेक दान, बसाहा दान, भरोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान। श्री अमृत साहब जी के इशनान, चौंकियां झंडे बुंगे, जुगो जुग अटल, धर्म का जयकार, खालसा जी बोलो जी वाहे, बोलो जी वाहेगुरु। सिखां दा मन नीवा, मत उची, मत का राखा आप अकाल पुरख वाहेगुरु। हे अकार अपने पंथ सदा सहाय दातार जीओ, गुरद्वारा श्री ननकाणा साहब अते होर गुरद्वारे गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है, खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान खालसे नूं बख्शना। हे निमाणिया दे माण सतगुरु, नीताणिया दे ताण सतगुरु, ने ओटियां दी ओढ़ सतगुरु, ने आसरां दे आसरा सतगुरु जी। धन धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जीओ, आप जो पवित्र चरणा विच अरदास बेनती जोदड़ी, सच्चे पातशाह सुनो बनती ठाकुर मेरे, ये जंत तेरे धारे, राख पैज नाम अपने कर्ण करा बनहारे। पातशाह जी आपने कृपा बख्शा मेरा कितियां, आप जी ने संगतां नूं दर्शन दारे बख्श के नदरी नदन हल करो। पातशाह जी आप जा कुटान कुटान शुकराना पातशाह जीओ, आप दिन कृपा बख्शा कीतियां, अमृत वेला बख्शिया, संगत बख्शी सच्चे पातशाह जीओ। संगत रूप च आप जो पवित्र बाणी धुरकी बाणी आई, तेने सगल चिंत मिटाए, सच्चे पातशाह कृपा की, नितनेम दियां दातां बख्शियां पातशाह। नितनेम जी की अरदास, अखर वाधा घाटा भुलचा माफ करना, बाणी पढ़दियां सुनदियां होइयां बेअंत बेअंत भुलां दी क्षमा बख्शने, अगे तो सुत स्पष्ट बाणी पढ़ ते सुनता बल ते बुद्ध बख्शनी पातशाह। असीं खत्ते बहुत कमाम दे अंत ना पारा वार, हर कृपा करके बख्श रहे हों पापी बड़ गुनाहगार। जेता समुद्र सागर नीर भरिया, तेते औगुण हमारे, दया करो कुछ मेर उभाओ। डुबदे पत्थर तारे, जीड़ा अगन बराबर तपे, भीतर बगे काती प्रणवत नानक हुक्म पछाणे, सुख होवै दिन राती पातशाह। कृपा की चार पैर रहण अपने भाणे ते सुखां नाल बतीत करवाई, चार पैर देना कृपा करनी पातशाह चे पिछा, अपने भाणे सुखां नूं बताउणा। आईआं संगतां दे दर ते हाजरियां, प्रवान कानियां कीते हां भेटा दर ते प्रवान कानियां, तरों करों गुर सिखी जीवन, नाम दियां दातां बख्शे निहार करना पातशाह जीओ। जगत जलंदा रख लै अपनी कृपा धार, जिते दो तिते रहो वार पातशाह। कृपा करनी सारे संसार दा भला करना सच्चे पातशाह, सारे संसार अपना नाम जपाउणा पातशाह। कृपा करनी फेरा करने सच्चे पातशाह जी, आप दे पवित्र चरणा विच पंचम कड़ा प्रसाद दी देग हाजर है जी। आप जी नूं प्रवान होवे, प्रवान होई देग संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो सच्चे पातशाह। करो कृपा आप जी अपने अलाही हुक्म बख्शे, निहाल करो ते हुक्मां चलने समर्था बख्शो। सही प्यारे मेल जिन्हां मिलिया तेरा नाम चेते आवे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सुरवत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, दोहराया गया भई अकाल के, तवे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है

दिया, छाड़ चले हम कछु न लिया। हृदय कलास निरखले मीरा, आखोज खोज मिले कबीरा। निर्धन आदर कोई ना दे, लाख नितन करे ओ चेतना तरे रहाओ। जाओ निर्तन सरदन कह जाए, आगे बैठा पीठ फिराए। जाओ सरदन निर्तन कह जाए, दिया आदर लिया बुलाए। निर्तन सरदन दोनों भाई, प्रभ की कला न मिटी जाई। कहे कबीर निर्तन है सोई, जहाँ कहे दे नाम ना होई। गुर सेवा ते भगत कमाई, ताबे मारस देही पाई। सदेही को सिमरत।

जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग विकल पई नहीं बानी, भजले रे मन सारंग पानी, अब ना भजस भजस का।

छूटे जब साधु पाया। जब लग मेरी मेरी करै तब लग काज एक नहीं सरै। जब मेरी मेरी मिट जाए तब प्रभ काज सुवार आए। ऐसा ज्ञान विचार मना हर की ना सिमर दुख भंजना रहा।

गजरावै मजलस दूर महल को पावै रहाओ। तैतीस करोड़ी है खेल खाना चौरासी लख फिरे दीवाना। बाबा आदम को किश नदर दिखाई उन पी पिस्त कनेरी पाई दिल खल हल जा कै जर दर

रज पंकज मैं लियो निवास द्वा दस दल अब अंतर मंत जय पौड़ी श्री कमला कंत अर्ध उर्द मैला गोकास सुन मंडल मैं कर प्रगास ऊहा सूरज नाई चंद निरंजन करे आनंद सो ब्रह्मांड पिंड सो जान मान सरोवर कर इशनान सोहं सो जा को है जाप जा को लिप्त न होए पुन अर्पा।

दूध पिया भगत कर आ गया, नामे हर का दर्शन भया, मैं बहुरी मेरा राम पतार, रच रचता को करो सिंगार, भले निंदो लोग, तन मन राम प्यारे जोग रहाओ, बात विवाद कहूं से ना कीजै, रसना राम रसायन पीजै, अब जी जान ऐसी बनियाई, मिलो गोपाल निशान बजाई, दोस्त निंदा करे नर कोई, नामे श्री रंग पेटल सोई, कबहू खीर खान।

जियो घर दूजा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद जैसे भूखे प्रीत अनाज त्रिखावंत जल से तीकाज जैसे मूड़ कुटुंब परायण जैस ऐसी नामे प्रीत नारायण नामे प्रीत नारायण लागी सह सभाए भयो बैरागी राव जैसे पर पुरखा रत नारी लोभी नर धन का हितकारी कामी पुरख कामनी प्यारी ऐसे नामे प्रीत मुरारी साई प्रीत जे आप आपे लाए गुरप्रसादी दुबदा जाए कबू न टूट सरया समाए नामे चित लाया सच नाए जैसी प्रीत बारक अर माता ऐसा हर सेती मन राता प्रणवै नाम दियो लागी प्रीत गोविंद बसे हमारे चीत कर की नार त्यागै अंधा।

ते डरै जिस जन को प्रभ दस्त प्यासा सगल पुरख मैं पुरख प्रधान आपस को जो जाने नीचा जाका मन हुए सगल किरीना मन अपने ते बुरा मटाना सुख दुख जन सम दृष्टिता निर्धन को तन तेरो ना नमाने को प्रभ तेरो मान करन करावन हार स्वामी अपने गतमत जानो आपे तुमरी औसत तुम ते हुए सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म सगल किरिया में उत्तम किरिया सगल उद्यम में उद्यम भला सगल बाणी में अमृत बाणी।

0: दस वस्तु ले पाछे पावे
1: एक बासन कोट कबावे
0: एक पीना दे दस पी हेर ले जिस ठाकर से नाही चारा जाके मन लागा परम मीठा जे जन अपना हुकुम मनाया अगंत सब अपनी दे राज अपनी अमान किस बोर सह ले अपनी प्रतीत आप ही खोवे जिसके वस्त आगे राखे होते चौगन करे निहाल अनुपात माया के हेत बिरखी छाया सो रंग लावे जो दिसे सो चालन हार बताऊ स्यो जो लावे नेह मन हर के नाम की प्रीत सुख दाई मिथ्या तन तन कुटुंब सवाया मिथ्या राज जोगन धन माल मिथ्या रथ अस्थिया सुवस्त्रा मिथ्या धरो मोह अभिमान अस्त्र भगत सार की सरन मिथ्या सुवर्ण बनंदा सुने मिथ्या नेत्र पेखत पर तिरया रूपाद मिथ्या चरण पर बेकार को धावे मिथ्या तन नहीं पर उपकारा बिन बूझे मिथ्या सब भय व्यर्थी साकत की आर जा वृथा नाम बिना तन अंध बिन सिमरन दिन रैर मिर्था बहाये वो बिन भजन बिन बिरथे सब काम धन तन तेजन जा कट बस्यो हर नाम रहत अवर किछ अवर कमावत जानर हार प्रभु पर भीन अवर उपदेशे आप ना करे जिसके अंतर बसे निरंकार जो तुम पाने तिन प्रभ जाता करो बेनती पाप ब्रह्म सब जाने आप करत नवेरा अपाप स्यान सगल ते रहत जिस पावे तिस ले लड़ लाए सो सेवक जिस कृपा करी।

ये प्रसाद शक्ति अमृत सखाए ये प्रसाद सुगंध तत्तान लावे ये प्रसाद बसे सुख मंदिर ये प्रसाद ग्रह संग सुख बसना ये प्रसाद रंग रस भोग ये प्रसाद पाड़ पटंबर हंडावे ये प्रसाद सुख सेज सोई जय ये प्रसाद सुतो जो सब दुख मान है ये प्रसाद तेरो रहता धर्म प्रभ जी जाप दर गए मान पावे ये प्रसाद अरोग कंचन देहि ये प्रसाद तेरा उल्ला रहत ये प्रसाद तेरे सगर छिद्र ढाके ये प्रसाद तुझको ना पहुँचे ये प्रसाद पाई दुर्लभ दे ये प्रसाद अपूखन पैरी जय ये प्रसाद अशुभ हस्त अशुभारी ये प्रसाद बाघ मिलख तना जन तेरी मन बनत बनाई इसे त्याय जो एक अलख है ये प्रसाद करे पौन बहु दान ये प्रसाद तू विचार बिहारी ये प्रसाद तेरा सुंदर रूप ये प्रसाद तेरी नीकी जात ये प्रसाद तेरी पात रहे ये प्रसाद सुनहे कर्णनाद ये प्रसाद बोले अमृत रसना ये प्रसाद हस्त कर चल है ये प्रसाद परम गत पावे ऐसा प्रभ त्याग अबर कत लागो ये प्रसाद तू प्रगट संसार ये प्रसाद तेरा प्रताप ये प्रसाद तेरे कारज पूरे ये प्रसाद तू पावे साच ये प्रसाद सब की गत होए आप जपाए जपे सो नाओ प्रभ कृपा ते होए परगास प्रभ सो प्रसन्न बसे मन सोए धर्म दान प्रभ तेरी माया।

0: संत कै दुखन आर जा घटे,
1: संत कै दुखन जमते नहीं छोटे,
0: संत कै दुखन सुख सब जाए,
1: संत कै दुखन नरक में पाए,
0: संत कै दुखन मत होए मलिन,
2: संत कै दुखन सो बाते
0: संत कै हरक हतेक रखे ना कोई,
2: संत के दुखन थान प्रस्त होए,
0: संत कृपाल कृपा जे करे, संत के दुखन ते मुख पावे, संतन के दुखन सर्प जोन पाए, संतन के दुखन तृष्णा में जले, संत के दुखन ते सब जाए, संत दुखी का था कोई ना है, संत का निंदक मां अतताए,
2: संत का निंदक
0: महा त्यारा, संत का निंदक राय तहीन, संत का निंदक को सर्व रोग, संत का निंदा दुख में दुख, संत का दुखी सदा अपवित, संत का दुखी को डान लागे, संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी जन में मरे, संत के दुखी को ना ही ठाऊ, संत का दुखी अध बीत ते टूटे, संत का दुखी उद्यान परमाइये, संत का दुखी अंतर ते थोथा, संत के दुखी की जड़ किस नाहे, संत के दुखी अबन राखन हार, संत का दुखी यो बिल लाए, संत का दुखी भूखा ने राजा, संत का दुखी छुटे अकेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, कीर्तन निंदक का तुर ही पया, संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत का दुखी सदा सह काय, संत का दुखी के पूजे न आसा, संत का दुखन त्रिष्ट है कोई,
2: जैसा पावे तैसा कोई होए,
0: या कर्तना मिटे कोई,
2: नानक जाने सच्चा
0: सब गढ़ तिसके उस करने हार,
2: सदा सदा तिसको नमस्कार,
0: राम के उस्त करो दिन रात,
2: तिसे ते आवो सास करात,
0: सब किस बल के तिसका किया,
2: जैसा करे तैसा को थिया।

0: मानव की टेक व्यर्थी सब जान
1: जिसके
0: दिए रहे अगाए
1: तृष्णा राखे
0: मारे राखे को आप
1: मान के कुछ नहीं
0: जिसका हुक्म बूझ सुख होए
1: जिसका नाम कंठ पर होए
0: सिमर सिमर सिमर प्राप्त होए
1: नानक बिगड़ना राखे होए।

0: संग
1: संग बैठे सब संग
0: चरण चलो मार्ग को बिंद
1: पाप जपिए हर
0: कर हर कर्म सर्वन हर कथा
1: हर दरगे नानक जल मथा
0: भागी ते जन जग माहे
1: सदा सदा हर के गुण गाए
0: राम नाम जो करे विचार
1: मंत्र
0: मुख बोले हर मुखे
1: सदा सदा जन ते सुखी
0: एको एक एक पछाने
1: नाम
0: संग जिसका मन माने
1: नानक तिने निरंजन जाने
0: गुर प्रसाद अपन आप सुजे
1: जानो तृष्णा बुझे
0: साध संग हर हर जस कहत
1: सर्व रोग ते हर जन रहत
0: अंधन कीर्तन केवल बखिया
1: करत मैं सोई निर्वाण
0: एक ऊपर जिस जन की आसा
1: पाप
0: ब्रह्म के जिस मन भूख
1: नानक तिसन लागे दुख
0: जिसको हाफरा मन चित आवे
1: सो संत सहिला ने डरावे
0: जिस पर अपना कृपा करे
1: सो सेवक को किसते डरे
0: जैसा सात ऐसा दृष्ट आया
1: अपने कार्य में आप
0: सोधत सोधत सोधत सीजिया
1: गुर प्रसाद तासा बुझिया
0: जब देखो तो सब कुछ मूल
1: नानक सो सुखम सोई
0: नैक जन्मे नैक मरे
1: अपन चलता आप ही करे
0: आवन जावन दृष्ट अन दृष्ट
1: आपे
0: आप सगल में आप
1: नानक युगतरा चाप थाप
0: अबनासी नाही खिच खंड अलख अपेग पुरख प्रताप

सगल की चिंता जिस मन माहे रे मन मेरे सदा हर जाप अपन किया कछु न हुए इसमें नाही तेरे किछ काम रूप बंत हुए नाही मोहे तनवंता हुए क्या को गर्व है अत सुमराज को कहावे ये को हुए बह दातार जिस गुर प्रसाद टूटे हो रूप जो मंदिर को थामे थम जो पखान ना विचर तरे जो अंधकार दीपक पर गाज जो महा उद्यान में मार्ग पावे तन संतन के बाछो तू मन मूर्ख काहे बिल लाइए दुख सुख प्रभ देवन हार जो कुछ करे सोई सुख मान कौन वस्त आई तेरे संग राम नाम जप हिरदे माहे जिस बखर को लैन तू आया ताज अमान ले मन मोल लाद खेप संत है संग चाल तन तन कहे सब कोई ए व्यापार बिरला व्यापार चरण सोच चरण साध को तो तुर पियो साध के तूर करो इसना साध सेवा बड़ भागी पाई अनक बनते साधु राखे ओट गही संत है दर आया मृतक को जवालन हार कर्म दान जाकी दृष्टि माहे सब को तिस्काव करने जोग जप जन सदा सदा दिन रहने कर कृपा जिसको नाम दिया जाके मन गुर की प्रतीत भगत पास सुनिए त्यो लोए सच करनी सचता की रहत सच्ची दृष्ट साचा आ

0: ਸਤ ਪਰਸਨ ਹਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਤ ਸਤ ਪੇਖਣ ਹਾਰ
1: ਨਾਮ ਸਤ ਸਤ ਹਾਰ
0: ਆਪ ਸਤ ਸਤ ਸਭ ਧਾਰੀ
1: ਆਪੇ ਗੁਣ ਆਪੇ ਗੁਣ
0: ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭਕਤਾ
1: ਸੁਰਤ ਸਤ ਸਹਜ ਸੁਣਤਾ
0: ਪੂਜਨ ਹਾਰ ਕੋ ਸਤ ਸਭ ਹੋਏ
1: ਨਾਮ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ
0: ਸਤ ਸਰੂਪ ਹਿਰਦੇ ਜਨ ਮਾਨਿਆ
1: ਕਾਰਨ ਕਰਾਵਣ ਤਿਨ ਮੂਲ ਪਛਾਨਿਆ
0: ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਸਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ
1: ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਸ ਮਨ ਪ੍ਰਟਾਇਆ
0: ਭੈ ਤੋ ਨਿਰਭੈ ਹੋਏ ਬਸਾਨਾ
1: ਜਿਸ ਦੇ ਪਜਿਆ ਤਸ ਮਾਇ ਸਮਾਨਾ
0: ਬਸ ਮੈਲਾ ਬਸਤ ਗੜਾਈ
1: ਕਾਕੋ ਪੈ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਈ
0: ਪੂਜੇ ਪੂਜਨ ਹਾਰ ਬਵੇ
1: ਨਰਾਇਣ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕ ਏਕ
0: ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ
1: ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ
0: ठाकुर के सेवक है मन प्रतीत ठाकुर को सेवक जाने संग
1: सेवक नाम के रंग
0: सेवक को पर पालन हारा
1: सेवक के रखे
0: सो सेवक दया पर्व धारे
1: सो सेवक सासा समारे
0: अपने जन का पर्दा ढाके
1: अपने सेवक के सर पर रखे
0: अपने अपने सेवक को नाम जपाई
1: अपने दास को दे बढ़ाई अपने सेवक को नाम जपाई
0: अपने सेवक की आप पात्र रखे प्रभ के सेवक को ना पहुँचे जो प्रभ अपनी सेवा लाया
1: सो सेवक दैस प्रगटाया
0: की कीरी मैं कल रखे प्रभ के सेवक को ना पहुँचे प्रभ के सेवक ऊंचे जो प्रभ अपने मानस जतन करत भांत मारिया राखे अवन न कोई काहे सोच करे रे प्राणी बारम बार बार प्रभ जपिए नाम रतन जिन गुरमुख
1: पाया
2: नाम
1: नाम सुख नाम का
0: नाम रस जो जन तरबताने
1: नामे नाम समने
0: उठद बैठ सोबत नाम
1: नानक जन के सदका
0: बोलो जस देवा दिन रात
1: अपने जन कीनी दात
0: करे भगत आत्म के चाहे
1: अपने सरे साए
0: जो हुआ होवत सो जाने
1: अपने का हुकम पछाने
0: जिसकी महिमा कौन बखानो आठ पहर पर बसे हजूरे
1: नानक से जन
0: मन मेरे तन की ओट ले
1: माता ने अपना तन जन दे
0: जन जन अपना प्रभु पछाता
1: सुजन सर्व दुख कत
0: जिसकी शरण सर्व सुख पावे
1: जिसके दास पाव मिटावे
0: अवर सयान सबली छाड़
1: जिस जन की तो सेवा लावे।

0: देश के संग सिख उदर
1: नानक हर गुण गाओ अष्टपते
0: सतगुर सेकी करे प्रतपाल
1: सेवक गुर सदा दयाल
0: सेकी गुर दुर्मत मल हिरे
1: गुर बने हर नाम उचरे
0: सतगुर सेक के बंधन काटे
1: गुर का सिख पकार ते हटे
0: सतगुर सेको नाम धन दे
1: गुर का सिख बड़ भागी है
0: सतगुर सेका हालत पालत सवारे
1: नानक सतगुर सेको जी नार सवारे
0: गुर के ग्रह सेवक जो रहे
1: गुर के आज्ञा मन में से
0: आपस को कर कछ न जनावे
1: नाम हृदय सत्य
0: मन बेचे सतगुर कह पास
1: सेव के कार्य
0: सेवा करत हुए न कामी
1: होत प्राप्त स्वामी
0: अपनी कृपा जिस आप करे
1: नानक सो सेव गुर की मतले
0: बीस बीस बे गुर का मन माने
1: सो सेवक परमेश्वर की घटिया
0: सतगुर जिसरे दे हर नाव
1: आठ बार गुर को बल
0: धर्म दान जी का दाता
1: पैर पार
0: ब्रह्म जन जन में पार ब्रह्म
1: आप नहीं कुछ कर
0: ऐस स्यान पलिया न जाइए
1: ऐसा गुरु कृपा की
0: सफर दर्शन पेखत पनीत पेट संग राम गुण रवे सुन कर बचन करन अगाने पूरा गुर अख्यो जा का मंत्र गुण बेअंत कीमत नहीं पाए जीवा एक औसत अनेक काहू बोल न पहुंचत प्राणी निरहार निर्वैर सुखदाई अनक भगत बंधन नित करे सद बलिहारी सतगुर अपने हर रस पावे जन कोई
1: अमृत पीवे अमर सोए
0: उस पुर का नाही कदे विनाश
1: जाके मन पलटे
0: आठ पैर हर का नाम ले
1: सच उपदेश सेवक को दे
0: मोह माया के संग न लेप
1: मन में रखे हर हरे
0: अंधकार दीपक परगासे
1: नानक परम दुख ते नसे
0: तब तमे ठांड बरताई
1: अंध दुख नाठे भाई
0: जन मरण के मिटे अंधे से पहुंचो का निरपय होए बसे जिसका सातन कृपा तारी पाए चूके परम गवन निर्गुण आप सरगुण पियो अपने चरित प्रव आप बनाए हर बैन दूजा नाही कोई ओत पोत रबिया रूप रंग रच रचना अपनी कल धारी
1: नानक बलिहारी।

0: सदा सदा प्रभु के गुण गावो, चरण कमल सिउ लागे प्रीत, एक कोट एको आधार, प्रभु की दृष्ट महा सुख होए, जिन चाख्या से जन त्रिपता ने तो पर परे प्रेम रस रंग, परे सन आन सब त्याग, बड़ भागी जपया प्रभ सोए, सेवक के मनसा पूरी भई, जन को प्रभ होयो दयाल, बंधन काट मुक्त जन भया, इस उन्नी सरदा सब पूरी, जिसका सातन लिया मलाए, को बिसरे जकाल न पाने, को बिसरे जिन सब कुछ दिया, को बिसरे अग्न में राखे, को बिसरे जे बेखते काड, गुर पूरे तत है बजाया, साजन संत करो ए काम,
1: त्याग जपो हर नाम,
0: सिमर सिमर सिमर सुख पावो,
1: आप जपो अपरा नाम जपावो,
0: भक्त पाए करिए संसार, सर्व कल्याण सुख निध नाम, सगल दुख का हो बतनाश,
1: नानक नाम जपो गुण
0: सुख जी प्रीत प्रेम रस चाओ,
1: मन तन अंतर ही सुहाओ,
0: नेत्रो पेख दर्द सुख होए,
1: मन पिसे साचन तोए,
0: भक्त जना के मन तन रंग, एक बस दीजे कर मैया,
1: प्रसाद नाम जप लिया,
0: कई उपमा कही न जाए, प्रभ बखसंद दीन दयाल, अनाथ नाथ गोविंद गोपाल, आद पुरख कारण करतार, जो जो जपे सो होए पनीत, हम निर्गुणी यार नीचे जान,
1: नानक
0: सर्व बकुंठ मुक्त मोख पाए, अनकराज भोग बड़े आई, भोजन कापर संगीत, भली सुकरनी शोभा धनवंत, साध संग प्रभ देहो नवास,

0: जब तारी अपन सुन समाज
1: वैर विरोध के संग कमाद
0: जब उसका वर्ण चहन ना जापत
1: तब हर सुखो किसे
0: व्याप्त जब अपन आप पर ब्रह्म
1: तब मोह कहां के शोभत
0: परम अपन खेल आप बरतीजा
1: नाने करने हार ना
0: दूजा जब होवे प्रभ केवल धनी
1: जब मन मुक्त को किसको
0: जब एके हर आगम अपार
1: तब नरक सर को कौन
0: उतार जब निर्गुण प्रभ सह स्वभाए
1: तब शिव संगत को
0: जब आप है आप अपनी ज्योत धरै
1: कवन डर कवन कथ डरे
0: अपन चल तब करने हा।

0: संत संग अंतर प्रभ डीठा
1: प्रभु का लगा मीठा
0: सगले सिमगरी एक घट माहे नौ निध अमृत प्रभ का नाम सुन समाद एहनत तह नाद
1: तेन
0: देखा जिस आप दिखाए
1: सो
0: अंतर सो बार अनंत
2: धर्म
0: में आकाश प्याल बंतन पर्वत है पार
2: कौन
0: पानी बसंतर माहे पहन नहीं कोठाओ वेद प्राण सिमरत मैं देख प्रभ की सब को बोले सर्व कला कर खेले खेल सर्व ज्योत में जाके ज्योत गुरु प्रसाद भरम का नास संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना सुने सब वचन
1: राम संरचन
0: जिन जाता तिसकी ये रहत जो जो होए सोए सुख माने अंतर बसे बार पी ओही आप सत किया सब सत भावे ता करे बिस्थार अनक कला लखी न जाए कवन निकट कवन कहिए दूर अंतर गत जिस आप जनाए सर्व भूत आप बरतारा सगल समगरी जा का तना आवन जान एक खेल बनाया सबके मद अलपतो रहे आग्या आवे आग्या जाए इसे हुए सो नाही बुरा आप भला करतूत अत निकी आप साच धारी सब साच
1: बाकी
0: गातमित कही ना जाए जिसका किया सब परवान जो जाने ते सदा सुख होए
2: वो
0: धनवंत कुलवंत पतवंत धन धन धन जान आया जान आवन का हो स्वभाव।

0: सिमरो गोबिंद
1: मनांतर के उतरे
0: आस अनित त्यागो तरंग
1: साधना के तोड़ मन मंगल
0: आप छोड़ बेनती करो
1: सत्संग अगन सागर तरो
0: हर धन के भर ले हो भंडार
1: नानक पूरे नमस्कार
0: खेम कुशल सहज आनंद
1: सत्संग पर परमानंद
0: नरक में बारो धारो जियो
1: गुण गोविंद अमर रस पियो
0: चित चित भव नारायण एक
1: एक रूप जाके रंग अनेक
0: कपाल दामोदर दीन दयाल
1: पूरन कृपा
0: सिमर सिमर नाम बारंगबार
1: नानक जी का यह उद्धार
0: उत्तम श्लोक साध के बचन
1: अमलेख लाल हे रतन
0: सुनत कुमावत होत उद्धार
1: आप तरे लोके निस्तार
0: सफल जीवन सफलता का संग
1: जाके माला का रंग
0: जय जय शब्द अनाहद बाजे
1: सुन आनंद करे प्रभु बजे
0: प्रगटे गोपाल महात के माथे
1: नानक रे दिन के
0: सन जोग सुन सरनी आए मिट गए बैर भय सब रे प्रसन्न भय गुरदेव आल जंजाल बेकार ते रहते
1: राम नाम सो रसना कहते।

करे जाको नजर करे तुद बाज प्यारे केवरहा सा बड़ियाई दे जित नाम तेरे लाग रहा दूजा नाही कोई जिस आगे प्यारे जाए कहा रहाओ सेवी साहब अपना अवर ना जाचो कोई नानकता का दास है बिंद बिंद चुख चुख होए साहब तेरे नाम बिटो बिंद बिंद चुख चुख होए नानकता का दास है बिंद बिंद चुख सुख होए साहब तेरे नाम बिटो बिंद बिंद चुख चुख होए रहाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी महला पहला कर चौप दे कर पहला चौप दे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सेवन गुरु प्रसाद जीव दर्थ अपना कैसो करी पकार दुख बसार न सेविया सदा सदा दातार साहेब मेरा नीतनामा सदा सदा दातार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की। परिवार बनवा सारिया संगत का तह दिल का धन्यवाद। दर्शन परखे से संगत नगे भाई साहब उन्हों का धन्यवाद कीर्तन किया भाई साहबान कोटान को शुकराना सच्चे पातशाह जी का तो सारे का धन्यवाद है सच्चे पातशाह बख्शी की संगत बख्शी है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।